आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 7 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: गगन को डोर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अये ये नागन डसले तो क्या कहना।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 9 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

जाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 नून इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

साथ अजूब। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

शेर, लैला मजनू, शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार।

पटना। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं भोजपुरिया धमाल आरजी सोनी के साथ सिर्फ रेडियो हॉटस्टार पर। भोजपुरी गानों की मस्ती और देसी अंदाज के साथ धमाकेदार मनोरंजन का रंग जमाइए और खूब एंजॉय कीजिए। अपनी पसंद के गानों को सुनने के लिए इस्तेमाल कीजिए रेडियो हॉटस्टार के सॉन्ग रिक्वेस्ट ऑप्शन का। अपनी फरमाइश भेजिए और अपने पसंदीदा गानों को बजवाइए। तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

नमस्ते नमस्कार भोजपुरी अपन नाम राम राम कैसन बानी रुवा सबे और उम्मीद करता नहीं कि रुवा सबे ठीक हो गया। हम रुवा संजाल बानी रेडियो हॉट स्टार सो भोजपुरी धमाल और हम बानी रुवा सबे के रेडियो दोस्त आज सोनी और

वेलकम बैक एक बार फिर से रवा सभी के बहुत बहुत स्वागत बटे सो भोजपुरिया धमाल में। और यहाँ मैसेज की बात करी था, काफ़ी सारा मैसेज भी। और सोनू गौतम जी जुड़ चुकल बनी, वेलकम करते हैं, लिखा था नहीं कि आज सोनी जी नमस्कार, सोनू गौतम और रामपुर उत्तर प्रदेश से। और उनके भी गाना सुनने के बाद तो बिल्कुल प्ले करने की कोशिश बाटे। और यहाँ मैसेज बाटे प्रिंस पासवान जी जुड़ल बनी, वेलकम करते हैं, एम डी जमीरुल जी बानी, प्रीति रदास जी सबके वेलकम बाटे, समय राजेश कुमार जी बानी रोवा के भी वेलकम करते

के भी शो में और बड़े माज की फरमाइश की तरफ और फरमाइश के बात कही जी सोनू गौतम जी की तरफ से फरमाइश बाटे ओढ़नी के रंग प्रिया तो चली रहा और गाना के फरमाइश जोन बा प्ले हो चुकल बा एंजॉय करी और अपन गाना के आनंद ले।

0: वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत बैठे। और अभी हमने के गाना सुना था, ऐसा गाने के फरमाइश करे वाला वाणी सुनो गौतम जी। और यहाँ मैसेज भी पहुँच गया, लिखा था नहीं कि थैंक यू, आज सुनी सी हमारा गाना बचा है। और आगे यहाँ मैसेज बैठे प्रिंस जी, लिखा था नहीं कि नमस्कार मैम, राधे राधे यूपी फतेहपुर जिला से प्रिंस प्रशांत। और गीत सुने के बाद राजा देख ला कौन रूपी रंगदार दी। और खेसारी लाल के आवाज में गीत सुने के बाटे। और यहाँ के गीत में शामिल बानी सत्येंद्र पासवान, आकांक्षा पासवान, नीतिनाथ, सुजीत राय जी, अविनाश जी, सुनील कुमार जी, लहरपुरी समस्तीपुर से परवेज अहमद जी, गौरव ठाकुर जी, सुकेश शर्मा जी, सोनू गौतम जी, सुनील कुमार जी, बांका बिहार से। और सभी के साथ सुने के चाहते हैं तो चलिए और गाने के फरमाइश जानवा पूरा कर जाता है, एंजॉय करें।
1: फिर अगर शिकार करना छोड़ दे तो इसका मतलब ये नहीं कि जंगल में राज कुत्ते करेंगे
2: जी। और राजा

वेलकम बैक आप सभी के एक बार फिर से। और हाँ, मैसेज प्रिंस जी की तरफ से पहुंच गया है, लिख रहे हैं कि तहे दिल से शुक्रिया मैडम जी गाना प्ले करे खातिर। और आगे यह मैसेज बैठे है सोनू गौतम जी के तरफ से, यार सोनू जी प्रिंस पासवान जी के पसंद एकदम लाजवाब लागल हमके खेसारी लाल की आवाज़ में। और एक और यहाँ मैसेज बैठे और राजेश कुमार जी लिखा तनी कि बहुत ही सुंदर लागल भोजपुरी गाना। और राजेश सोनी जी राधे राधे राधे राधे रोग के भी। और आगे यहाँ प्रीति जी लिखा तनी कि हमके गाना सुनने के बाद गजब के रोग गए जवानी में। बिल्कुल गाने की फरमाइश प्ले करें, थोड़ा इंतजार करी। वेलकम बैठे शो में। और यहाँ एम डी जमीरुल जुबानी लिखा तनी कि हम भी आपके प्रोग्राम से जुड़ गए बनी और पहली बार हमारा फरमाइश बा और चला दें। बिल्कुल फरमाइश बा प्ले करें फिलहाल। या अगला फरमाइश बा हमारा पास बाटे एंडी जमीरुल जी के। और यहाँ के सुनने के बाद गाना अखिया के पास रहेगा। तो चली राहुल गाना भी प्ले हो चुकल बाटे, अखिया के पास रहेगा, इंजॉय करें।

बिल्कुल अख्या खिन के पास रहता। वेलकम बैक एक बार फिर से। और अभी गाना काफ़ी सुंदर और गाना के फरमाइश करे वाला रनिया नाम बटे यहाँ के एमडी जमीरुल जी। और अगला फरमाइश की तरफ बढ़े उससे पहले यहाँ मैसेज पर लिखा था निकाजे सोनी जी, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है और भोजपुरी बाहर। और आगे यहाँ लाइव चैट की तरफ नज़र डालें हम। और सोनू गौतम जी जुड़ल बानी, विशाल पांडे जी बानी, पूजा भास्कर जी और धनेश मिश्रा जी रोबस सवे के वेलकम बर्थडे शो में भोजपुरी धमाल में। और सर्वेश भगत जी भी बानी यहाँ लाइव चैट में और बढ़िया बाटे। और अगला फरमाइश की तरफ बढ़े जॉन कैमरा पास बाटे। अगला फरमाइश पूजा भास्कर जी का और यहाँ के सुने के बकल्पना जी की आवाज़ में लामी लामी केसिया। तो एंजॉय करिए अपन गाना के गाना प्ले हो चुका।

वेलकम बैक आप सभी के सो वो प्रिया धमाल में, और अभी गाना सुनते हैं पूजा भास्कर जी के फरमाइश, और यहाँ की तरफ से मैसेज भी अबा लिखा था नहीं सॉन्ग प्ले करे खातिर थैंक यू, और या धनेश मिश्रा जी लिखा था नहीं कि अखिया के पास रहता बहुत ही अच्छा सॉन्ग लगा, और विशाल पांडे जी लिखा था नहीं लामी लामी केशिया सोनी जी के लिए बहुत ही सही बात बा और गाना लाजवाब, और धन्यवाद बटे। अगला फरमाइश की तरफ बढ़े जन की हमारा पास पहुँचल बटे एम डी फैज आलम जी के, और यहाँ के सुने के बाद आई लव यू राजा जी खेसारी लाल के आवाज में तो चली गाना प्ले हो चुका बा, एंजॉय करी।

गाना सुनाता है, गाने का फरमाइश करे वाला बानी एमडी फैजी। और यहाँ राजेश कुमार जी लिखा था नहीं कि लाजवाब फरमाइश भोजपुरी। और अगला फरमाइश की तरफ बढ़े मुझसे पहले यहाँ। अच्छा, और विशाल पांडे जी लिखा था नहीं कि आज राधा अष्टमी है, कुछ स्पेशल बाका। तो स्पेशल तो अभी तक नहीं किया, अगर रहुआ पास कुछ स्पेशल बात तो जरूर भेज दे। फिलहाल ये अगला फरमाइश बटे विशाल पांडे जी के, और यहाँ के सुनने के बाद गाना नथुनिया पागल के लिए बात। एंजॉय करें।

0: वेलकम बैक और नथुनिया पागल के लिए काफी खूबसूरत गाना और गाने के फरमाइश के साथ है रनिया विशाल पांडे जी। और यहाँ सोनू गौतम जी लिखा था नहीं कि आज सोनी मैम आपके प्रोग्राम में फर्स्ट बार अच्छा पढ़ के जुड़ल बनी और अच्छा लगा था आपके प्रोग्राम भोजपुरी या धमाल, धन्यवाद बटे। और आगे यहाँ लाइव चैट की तरफ बढ़ी तब प्रीति रदाल सी पानी और रेनबो लवर भी जुड़ चुकल बनी, वेलकम बटे रुआ के भी शो में। और अगला फरमाइश जोन हमारा पास बटे प्रीति रदाल जी का और यहाँ के बाद सुने के गाना गजब के रोग जवानी में, तो एंजॉय करी प्रीति जी।
1: मोहब्बत के मौसम बदल ना सके, हाल दिल के संभाले संभल ना सके, रोग ऐसन भैलबा बताई का हम, मन के महफिल से मस्ती निकल ना सके।

दिल में राखब, दिल के अरमान बना के, तोहके दिल में राखब, दिल के अरमान बना के, अरे जान जबले रही कसम से।

एक बार फिर से स्वागत और सुबह सुबह धमाल में। और अभी गाना सुने टेंशन गाने के फरमाइश प्रीति जी के रहे। और यहाँ एक तरफ से मैसेज भी पहुँच गए बटे और लिखा था नहीं कि बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी हमारा गाना प्ले करे खातिर। और यहाँ मैसेज बटे और मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी जुचुअल बने लिखा था नहीं कि हम भी आपके प्रोग्राम में शामिल हो गए बनी वेलकम बटे रोगा के भी शो में। और यहाँ सोनू गौतम जी लिखा था नहीं कि गजब के रोग जवानी में दे गए लखिया उदित नारायण जी की आवाज़ में बहुत ही लाजवाब सॉन्ग और प्रीति रदास जी के। और अगला फरमाइश सॉन हमारा पास बाटे अभिषेक तिवारी जी के। और यहाँ एक और हमारा फरमाइश दिखा था टे सुभाष तिवारी जी के। तो हम लोग कह दी अगर गाना राहुल जोन बाटे हम ना प्ले कर सका तनी गाना का फरमाइश अपन चेंज कर दी। फिलहाल हम गाना के फरमाइश राहुल रिजेक्ट कर दनी। और अगला फरमाइश जोन हम प्ले कर जाते नहीं अभिषेक तिवारी जी का। और यहाँ के सुने का वो गाना नामो बदनाम बाबू कहते हैं एंजॉय करी गाना के।

0: गाना अभिषेक तिवारी जी के साथ डाउनलोड नहीं किया भाई, तो अगला गाना रहो रही फिलहाल ही अगला फरमाइश हम प्ले कर जाता नहीं कहे तो ऐसे सजना सर्वेश भगत जी के फरमाइश बटे और यहाँ की तरफ से वॉइस मैसेज बता
1: अर्जे सोनी जी नमस्कार नमस्ते जी, हम भी जुड़ गए हैं और हमारा आज का फरमाइश है मैं फिल्म है मैंने प्यार किया गाने का बोल कहे तुझसे सजना, यही गाने का बोल है भोजपुरी गाना है। हॉट स्टार जो सबको दीवाना बनाते सभी बड़े को प्रणाम सभी छोटे को आशीर्वाद, हम सर्वेश भगत दाहा जिला वैशाली बिहार से बोले, हमारा परिवार सतीश भगत प्रकाश बोली सुरेश कुमार मनोज जायसवाल अशोक देशमुख जी तुम्हारा पाटिल जी सैयद यूनुस जी आरजे सोनी जी आरजे आदित्य जी आरजे वंशिका जी आरजे अमन सर जी सुंदरता की मूर्त जी आरजे
0: सर्वेश भगत जी एंजॉय करी गाना के अपन

वेलकम बैक एक बार फिर से शो भोजपुरी या धमाल में। और अभी गाना सुना था निशा नामी के गाने के फरमाइश जॉन पुंचल बाटे सर्वेश भगत जी की तरफ से। और यहाँ राजेश गौतम जी लिखा था नी लाजवाब सॉन्ग और सर्वेश भगत जी के दिल से धन्यवाद बाटे। और यहाँ लाइव चैट में चली था धनेश मिश्रा जी का बात बाटे, लिखा था नी कि वो बात ही क्या करे जिसकी कोई खबर ना हो, वो दुआ क्या करे जिसकी कोई असर ना हो, कैसे कह दे कि लग जाए हमारी उम्र, आपको क्या पता अगले पल हमारी उम्र ही ना हो। और ऐसा मत कहिए धनेश जी, और बिल्कुल। और रेनबो लवर जी राहुल लिंक पहुंच चुका बटे, थोड़ा वेट करिए और गाना जॉन बाटे जरूर प्ले हुई है। और यहाँ अगला फरमाइश, और अगला फरमाइश जॉन हमारा पास बाटे अभिषेक तिवारी जी के, और यहाँ के सुने के बाटे गाना नामो बदनाम भोजपुरी के। चली राहुल गाना भी जॉन बाटे प्ले हो चुका, एंजॉय करिए अपन गाना के नाम।

वेलकम बैक। और अभी हमने के गाना सुना था, सब गाने के फरमाइश जो हम रहे चले रहे अभिषेक तिवारी जी और यहाँ राधे रॉय चुकचुकल बैंड लिखा था नहीं। मैडम जी नमस्कार। और राधे रॉय हमके भी गीत सुने के बाटे ससुरा बड़ा पैसा वाला से धारा बिन जीना सकीला। बिल्कुल फरमाइश आप ले करे के पूरा कोशिश बाटे, वेलकम बाटे सुनने। और अगला फरमाइश के तरफ बढ़म जान के हमारे पास पहुँचल बाटे गाने के फरमाइश बापजी फिल्म से राजेश कुमार जी बनी है के गाना सुने के बाद सच्चा तोड़ दिया ले। तो चलिए राहुल गाना जोन बाटे प्ले हो चुकल बाटे और इंजॉय करी गाने के।

हरियाणा के फरमाइश राजेश कुमार जी के रहे तो और अगला फरमाइश की तरफ बढ़े, लेकिन उससे पहले हम रोवा सब के एक बात कह के चाहते नहीं कि ऑर्केस्ट्रा नहीं के चला तो और तो चला था तो ऑर्केस्ट्रा वाला गाने का फरमाइश बिल्कुल ना करी लो, जोन भी गाने का फरमाइश करी लो सोच समझ के करी लो, कहे कि अकेले रोवा नहीं के सुना रोवा साथ बहुत लोग सुने वाला बाटे और ये जी बहुत सारा गाना ऐसा आयल बा जोना के हम रिजेक्ट कर देता नहीं और फिर हमरा के दोस्त ना दे हमें कहे कि कोनो भी गाना उठा के भेज देता नहीं लो ये से तो ना चली हमरा पास। और यहाँ राजेश शर्मा जी लिखा था नहीं कि लाजवाब सॉन्ग सुपर से ऊपर और राजेश कुमार जी की तरफ से भी मैसेज बांटे लिखा था धन्यवाद आरजे सोनी जी एक और मैसेज यहाँ बाबे और एम ताहिर जी जुड़ चुकल बनी वेलकम बाटे रोवा के भी शो में और लिखा था सोनी जी आपके हमारे प्यार भरा नमस्कार बाटे सोनी जी आपके शो एकदम झकास चल रहा था धन्यवाद। और अगला फरमाइश के तरफ बढ़े जो उनके हमारा पास पहुँचल बाटे रेनबो लवर जी के और यहाँ के सुने के बाद गाना डीपी बीपी बढ़ा होता है तो इंजॉय करें।

वेलकम बैक एक बार फिर सभी के। और अभी काफ़ी खूबसूरत गाना रेनबो लवर जी के और यहाँ की तरफ से मैसेज भी पहुँच गया, पहले कहते हैं थैंक यू। और अगला फरमाइश के तरफ बढ़ें और यहाँ अगला फरमाइश जो हमारे पास पहुँचल बाटे वो बाटे सुभाष तिवारी जी। हम लोगों को बता दें कि अभी गाना चल रहा है ना दुनिया पागल के लिए, और वो अगर सुना तनी तो सुन रहे हो कभी गाना के तो फिर से गाना चेंज कर दी और दूसरे गाने की फरमाइश कर दी। और अगला फरमाइश जौन बाटे पिपरा के तरवा, और गाना के फरमाइश के लिए बनी मनीष पांडे जी। तो एंजॉय करिए अपन गाना के पिपरा के तरवा।

वेलकम बैक टू वसुबे के एक बार फिर से स्वागत बटे। और यहाँ गाना भी हमने का सुनत रही सन जो उनकी फरमाइश रहे धनेश मिश्रा जी के। तो धनेश मिश्रा जी बताएं कि केकरा प्यार में रहुआ लुट गल बनी बर्बाद हो गल बनी। और यहाँ राजेश कुमार जी लिखा था प्रोग्राम सुपर हिट चल रहा बा। आरजे सोनी जी धन्यवाद बटे रुआ के भी। और राजेश कुमार जी लिखा था कि सुपर प्रोग्राम चल रहा बा बहुत ही लाजवाब सॉन्ग धन्यवाद बटे रुआ के भी। और अगला फरमाइश के तरफ बढ़े जो उनके हमारा पास पहुँचल बटे राकेश शर्मा जी के। और यहाँ के सुनने के बाद गाना ससुरा बड़ा पैसा वाला से तो चली रहा और गाना भी प्ले हो गए। एंजॉय करिए अपन गाना के।

0: वेलकम बैक रोहस वेकेश। सो भोजपुरिया दमाल में और अभी हमनी के गाना सुनत रही सन। गाने के फरमाइश करे वाला रही है नाम रहा यहाँ के राकेश शर्मा जी। और अगला गाना के फरमाइश भी बाटे जॉन की ससुरा बड़ा पैसा वाला से। फिलहाल यहाँ राकेश शर्मा जी के तरफ से मैसेज वाले लिखा तनी आरजे सोनी जी दिल से धन्यवाद बाटे हमारे गाना बजावे खातिर और सभी दोस्त के धन्यवाद बाटे बिल्कुल। और अगला फरमाइश के पहले एक और यहाँ वॉइस मैसेज बात सुन लिया जाओ और बिरजू जी जुड़ चुका बनी वेलकम बाटे और क्या कहते हैं सुना जाए।
1: बहुत गाना अच्छा सा चल रहा है, मुझे भी गाना सुनना है। कथौ ना मनवा लागे सुतले पे अखिया जागे, पवन सिंह का आवाज में। मैं बिरजू सोनभद्र से।
0: ठीक बटे गाने के फरमाइश पर और तो प्ले करे के पूरा कोशिश बा। फिलहाल ये अगला फरमाइश जोन हमरा पास बाटे राधे रॉय जी के फरमाइश बाटे और यहाँ के गाना सुने के बाद हम तोहरा बिन जी ना सकले। तो एंजॉय करिए अपन गाने के।

वेलकम बैक टू सबे के शो भोजपुरी धमाल में। और अभी हमने के गाना सुना था, इसमें गाने के फरमाइश करे वाला रनी है राधे रॉय जी, और यहाँ राजेश कुमार जी की तरफ से मैसेज बटे लिखा था कि लाजवाब फरमाइश है। और राकेश शर्मा जी लिखा था कि बहुत ही प्यारा गाना, हम तोहरा बिन जी ना सके लिए धन्यवाद बटे। और यहाँ MD जमीरुल जुड़ल बने लिखा था कि मोहम्मद जमील और तमिलनाडु से जुड़ल बनी, हमके भी गाना सुनने के बाद चल गया। और बिल्कुल गाना सुनने के बाद गाने के फरमाइश दे दी, वेलकम बटे शो में। और बाबूलाल अंजना जी जुड़ चुकल बनी, बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के भी शो में। लिखा था नहीं कि सोनी जी हमें भी एगो सॉन्ग सुनने के बाद भोजपुरी सॉन्ग दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के, तो बिल्कुल फरमाइश पर प्ले करे की पूरा कोशिश है फिलहाल। यहाँ अगला फरमाइश, और अगला फरमाइश जोन हमारा पास बटे सनी जी के मेहरी के सो, एंजॉय करी सनी जी।

वेलकम बैक। और क्या बात, बस सनी जी तो एकदम धमाल मचा देनी। और उधार तो बिल्कुल नहीं के मिल सकत, चाहे वो केहू के मेहरी के सुख होके। और अगला फरमाइश के तरफ बढ़े, और अगला फरमाइश जो हमारा पास बाटे, एमडी ताहिर जीवानी, और यहाँ के सुने के बाद आना पवन सिंह की आवाज में आरा के सारा। तो चलिए गाना प्ले हो चुका, एंजॉय करी।

एक बार फिर से स्वागत बाटे सो भोजप्रिय धमाल में। और अभी हमने के गाना सुनत रही सर, गाने के फरमाइश करे वाला रनिया एम ताही जी। और यहाँ मैसेज बाटे और बात बा, कई सारा फरमाइश अभी भी पहुंचा ताटे। और अगला फरमाइश के तरफ बढ़े, मुझसे पहले यहाँ राधा रॉय जी लिखा था कि एक और गाना सुने के बाद हमके लॉलीपॉप लागे लू पवन सिंह के आवाज़ में। तो भाई एक शो में एक ही गाना सुन सका था नहीं। और यहाँ बबलू अनजाना जी जुड़ल बनी लिखा था नहीं कि एम ताही जी के डिमांड अच्छा लागल, धन्यवाद बाटे। और अगला फरमाइश के तरफ बढ़े जौन के हमारा पास पहुँचल बाटे, गाना अनिल जी के छोटपुर से पलकन के छाव में। तो इन्जॉय करी गाना के और डेडिकेट बस सभी लिसनर के।

वेलकम बैक। और अभी हमने के गाना सुन लिया सन अनिल कश्यप जी के फरमाइश रहे। और यहाँ अमताही जी लिखा था, धन्यवाद आपके गीत के पसंद करे वाला के भी। और रवा के भी धन्यवाद। बाबू अंजाना जी लिखा था कि ये वाली डिमांड भी प्यारी लगी, चलिए धन्यवाद बटे। और अगला फरमाइश की तरफ बढ़े। और अगला फरमाइश जोन हमरा पास बा, उससे पहले यहाँ विष्णु चंद्र जी जुड़ल बानी, वेलकम करते हैं रवा के भी। और लिखा था कि आरजे सोनी जी, हम भी जुड़ गए बानी आपके रेडियो स्टार रेडियो हॉट स्टार ज्योति गाना बना दे, धन्यवाद रोवा के भी, वेलकम करता नहीं। और आगे यहाँ अगला फरमाइश जोन हमरा पास बा पिया जी के, मुस्की मिलाली जी के। और यहाँ के पास सुनी गाना, तो चलिए राहुल गाना भी प्ले हो चुका है, एंजॉय करें।

0: वेलकम बैक रोवा सभी के सो भोजप्रिया धमाल में। और अभी गाना सुनत ने सन गाने के फरमाइश कर वाला रनिया मृणाल ने जी। और यहाँ लाइव चैट में देखी तो नागेश्वर धाकर जी जुड़ल बनी, वेलकम करते हैं रोवा के भी शो में। और अगला फरमाइश की तरफ बढ़े मुझसे पहले यहाँ निशांत राय बोले जी लिखा था नहीं कि हाय आज सोनी जी बहुत ही प्यारा गाना है, और धन्यवाद रोवा के भी। और यहाँ विष्णु चंद्र जी लिखा था नहीं कि गुड सॉन्ग न्यू सॉन्ग, और धन्यवाद बटे रोवा के भी। और अगला फरमाइश जोन हमारा पास पहुँचल बटे खेसारी लाल की आवाज़ में तबला सॉन्ग सुने के बाद विष्णु चंद्र जी के, और डेडिकेट बाटे हॉट स्टार के सभी श्रोता के। तो एंजॉय करी अपन पसंद के गाना तबला
1: 1500 प्रीलोडेड गान।

0: अरे पूरा इंडिया।
1: वेलकम बैक। और अभी हमने के गाना सुना था विष्णु चंद्र जी के फरमाइश रहे, और यहाँ बबू अंजाना जी लिखा था कि विष्णु चंद्र जी के डिमांड भी शानदार लागल। और अगला फरमाइश के तरफ बढ़े जान के हमरा पास पहुँचल बा एमडी सोनू जी के, और यहाँ के सुने के बाद गाना जान गए नी एहो जान। तो एंजॉय करिए अपन गाने के, गाना प्ले हो चुकल बा।

वेलकम बैक। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने के फरमाइश करे वाले एमडी सोनू जी। और यहाँ विष्णु चंद्र जी लिखा तनिक धन्यवाद हमारे गाना सुनावे खातिर। और अगला फरमाइश की तरफ बड़े मर्जन के हमारे पास पहुँचल बा बबलू अनजाना जी बानी। और यहाँ के सुने के बाद गाना सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के, एंजॉय करी गाना के।

0: वेलकम बैक। और अभी गाना सुनत रहे सब बबलू अंजाना जी के, बाबूलाल अंजाना जी के फरमाइश रहे। और लिखा था आज सोनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा डिमांड प्ले करने के लिए। और यहाँ आगे मैसेज बाटे बजू जी लिखा तनी, और रिहा की तरफ से वॉइस मैसेज बात, तो सुनल जाओ का कहते नहीं।
1: मूर्ति बना रहा हूँ आरजे सोनी जी, इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ मैसेज।
0: कोई बात नहीं, काम करते रहिए और सुनते रहिए। फिलहाल अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगला फरमाइश जो हमारे पास बाटे प्रदीप कुमार जी का, और यहाँ का सुने के बाद गाना की लाल के आवाज में पायल उतार दी आवाज करता, तो एंजॉय करी गाना के।

0: वेलकम बैक रोवा सभी के शो भोजपुरी धमाल में। और अभी हमने गाना सुना था, सुन गाने का फरमाइश करे वाला रही है प्रदीप कुमार जी। और अगला फरमाइश परजे जी के बाद वॉइस मैसेज में, तो चलिए सुना जाओ कौन गाने का फरमाइश भाई यहाँ की तरफ से।
1: बहुत गाना अच्छा सच चल रहा है, मुझे भी गाना सुनना है। कथों ना मनवा लागे, सुतले पे अखिया जागे। पवन सिंह का आवाज में, मैं बिरजू सोनभद्र से।
0: तो चलिए और गाने के फरमाइश भी प्ले हो चुकल बटे और एंजॉय करिए।

रोगा कभी। और आगे यहाँ विश्व चंद्र जी लिखा था नहीं की गुड न्यूज सॉन्ग और धन्यवाद रोगा कभी। और यह गाने के साथ है रोगा सभी दी आज के कार्यक्रम से हम रखे निकली के इजाजत और फिर मुलाकात हुई अगला सैटरडे यानी अगला शनिवार के फिर दोपहरिया के 1:30 बजे। तब तक खातिर सुनत रही रेडियो हॉट स्टार जान के दीवाना बना दे और तब तक खातिर दी इजाजत नमस्कार।

Radio Gaana and it's 3 p.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you. आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं. रेडियो गाना बजाते रहो दिल से. You're listening to Radio Gaana and it's 4 p.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

ना ऐसे ठोकर तेरा पैर फिसल जाए, है कितनी नाजुक तू आए, संभल ओए मोच ना आ जाए। मारना ऐसे ठोकर तेरा पैर फिसल जाए, है कितनी नाजुक तू आए, संभल ओए मोच ना आ

मेरी चलो ले जा छल्ला निशानी, आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी, मेरी मोहब्बत।

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंतरा मस्ती। कल रविवार संडे स्पेशल में सुनिए स्टार मूवी चॉइस और कीजिए दिए गए फिल्मों से गाने की मैसेज फरमाइश सिर्फ रेडियो हॉट स्टार के ऐप से दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार और रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

सत श्री अकाल, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज का बहुत ही प्यारा शो जिसका नाम है स्टार अंतरा मस्ती। यस, आज मस्ती करने वाले हैं एक से बढ़ के एक गाने के साथ। लेकिन आज ये भी बता दूं कि आज है राधा अष्टमी, तो आप सबको राधा अष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

बिल्कुल ओ राधा तेरे बिना ओ तेरा शाम है आधा, बिल्कुल आधा है। वैसे सबसे पहले जुड़ने वाले हमारे सरफराज सरफराज पटेल भाई जुड़ चुके हैं साउथ अफ्रीका से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और हमारे रणवीर सिंह जेठालाल जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है। विष्णु चंद्र जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। विष्णु चंद्र जी, अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। आरिफ सिंधी जी भी हैं, बहुत बहुत वेलकम है, वेलकम सलाम। और सरवजीत सेठी जी फाजिलका पंजाब से वेलकम करते हैं, आपका भी मुबारक हुसैन जी भाई मुबारक हो, आप जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और शिल्पा बहन जी वेलकम करते हैं आपका भी। और सभी दोस्तों से अब रिक्वेस्ट है कि सभी को चलना पड़ेगा व्हाट्सअप पर आज के लिए, क्योंकि आज के दिन सारा प्रोग्राम व्हाट्सअप से ही किया जाता है। नंबर है 9135841232, यानी 9135841232। और 8412 भाई यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। फिलहाल यानी कि विष्णु चंद्र जी और यानी कि पूजा भास्कर जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। एम ताहिर खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। मिसाल अंगा जी जुड़ चुके हैं और प्रियंका जी जुड़ चुकी हैं और यहाँ पे बागेश्वर निषाद जी जुड़ चुके हैं, सभी का वेलकम वेलकम वेलकम है। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस गाने के साथ, और इस गाने से आप अंत में जो भी शब्द आएंगे उन शब्दों से कोई भी गाना लिख कर भेज सकते हैं, और तब मैं आपको कॉल लगाऊंगा अगर सबसे पहले आपका नंबर मतलब मैसेज मेरे पास आता है। तो नंबर है 9135841232।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बनाते हैं। बहुत सारे मेरे पास मैसेज आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैसेज बागेश्वर निषाद जी का है। अब बागेश्वर निषाद जी के बाद है यानी प्रियंका जी हैं और मनीषा जी जुड़ चुके हैं। वेलकम है। निशांत है बोले जी जुड़ चुके हैं। दीपक जी ये मैं ऑफर नहीं दे रहा हूँ भाई, ये रेडियो बनवाने वाले लिए, मतलब जो लोग यानी कि रेडियो का ऐप बनवाना चाहते हैं उनके लिए वो ऑफर है। ओके निशांत राय बोले जी ओके। और हमारे मतलब इन विष्णु जी हैं, अशोक पाल जी हैं, आरजे आकांक्षा जी हैं और अशोक देशमुख जी हैं, मिसाल अंगद जी हैं, एम ताहिर जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, अशोक कुमार जी हैं, रूपचंद गोयल जी हैं, सरोजित सेठी जी हैं, आरिफ सिंधी जी हैं। तो सभी का वेलकम करते हैं, सीधे कॉल लगाते हैं बागेश्वर निषाद जी का।

0: बागेश्वर निषाद जी आपका बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती में, कैसे हैं आप? हेलो
1: क्रिस्टिंग
0: जी, बागेश्वर निषाद जी कैसे हैं आप? नेटवर्क इशू पहले ही लग गया है। हेलो,
1: अच्छा सर ऊपर चलते हैं छत पे।
0: हाँ हाँ जल्दी चलिए प्लीज।
1: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए।
1: हाँ नीचे है ना इसलिए।
0: हाँ थोड़ा सा
1: आवाज आ रही सर
0: जी, आवाज आ रही है फिलहाल आपकी। और तो बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं बागेश्वर निषाद जी?
1: सर गाना चुन के लाए हैं कितना हसीन चेहरा।
0: नहीं आपने भेजा है चांद तारों में नजर आया चेहरा तेरा।
1: चांद तारों में नजर, हाँ चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा।
0: जी सर जी, जो जो भेजते उसी को बिल्कुल रखिए याद। ओके

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। तो इस अंतरे में जो भी शब्द आपके कानों में पड़ेंगे, जो आप सुन रहे हैं, जो भी शब्द आए उनमें से जो भी शब्द आपको समझ में आए उसमें से किसी एक शब्द से गाना आप मुझे लिख कर भेज सकते हैं 9135841232 पे।

0: पास बहुत सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं। सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है इस बार सुनीता गोप जी का। ओके जी सुनीता गोप जी और यानी प्रियंका जी हैं, और यहाँ पे नाम है सुनील कुमार जी हैं, एम ताहिर जी हैं, अशोक पाल जी हैं, आर्जे आकांक्षा जी हैं, दीपक जी हैं, अशोक कुमार जी हैं, मनीषा शर्मा जी हैं, राधा कृष्ण गोप जी हैं, विशाल अंगद जी हैं, राम गिरुप चंद्र गोयल जी हैं, सरगत भगत जी हैं, और नाम है यानी विष्णु चंद्र जी हैं, शिल्पा बेन जी हैं, नीतू सरन जी हैं, आदित्य सिंधी जी हैं, सरगत भगत जी हैं, विकास जी हैं। तो सभी का वेलकम करते हुए सीधे कॉल लगाते हैं सुनीता गोप जी को। जी बहुत बहुत वेलकम है सुनीता गोप जी, कैसी हैं आप? हेलो, अब तो नंबर पे कॉल किया हूँ।
1: हाँ नमस्ते सर।
0: नमस्ते, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है।
1: जी सर आवाज घर घर आ रहा है सर।
0: अच्छा कोई बात नहीं, फिलहाल बता दीजिए।
1: हाँ सर वही उसी गाना को सुना दीजिएगा, रंग भरे मौसम से रंग चुरा के।
0: ओके सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए।
1: धन्यवाद जी सर, थैंक यू।

बिल्कुल मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं और सबसे पहला मैसेज पहुंचा है आरजे आकांक्षा जी का। ओके, और सोनू गौतम जी है, प्रियंका जी है, सुनील कुमार जी हैं और पूजा भास्कर जी हैं और एम यानी ताहिर साहब जी हैं, राधा कृष्ण गोप जी हैं, अशोक कुमार जी हैं, अशोक देशमुख जी हैं, दीपक जी हैं, दीपक कुमार गायकवाड़ जी, रूपचंद गोयल जी, बागेश्वर निशा जी, सरोज भगत जी, विष्णु चंद्र जी, शिल्पा बहन जी, निशांत बोले जी, नीतू सरन जी, सुनीता गोप जी, आदित्य सिंधे जी और सर्वजीत सेठ जी और सिकंदर जी। तो सभी का वेलकम करते हुए कॉल लगाते हैं आरजे आकांक्षा जी को।

बिल्कुल बहुत बेचैन होकर मिला। सबसे पहले मेरे पास मैसेज पहुंचा किन का, इन प्रियंका जी का, सुनील कुमार जी का, एम ताहिर जी का, दीपक जी का, अशोक कुमार जी का, राधा कृष्ण गोप जी का, रूपचंद गोयल जी का, मिशाल अंगद जी का, शिल्पा बेन जी का, सुरेश भगत जी का, सुनीता गोप जी का, निशांत रायपुर जी का, विष्णु जी का, सर्वजीत सेठी जी का। कॉल लगाएंगे सीधे हम किन को, इन प्रियंका जी को।

0: बिल्कुल मिटा दे और कॉल लगा दे। फिलहाल यहाँ पे नीतू जी भी कभी मैसेज है, आरिफ सिंह जी कभी मैसेज है, लेकिन इन लोग का मैसेज लेट से पहुँच रहा है। आप लोग कोशिश कीजिए कि एक बार ऐप को स्टॉप करके फिर से प्ले कीजिएगा ताकि आपको बिल्कुल सही से सुनाई दे। बहुत बहुत वेलकम है आपका प्रियंका जी अंतरा मस्ती में। हेलो,
1: थैंक यू। हाँ,
0: और कैसी हैं आप?
1: हाँ, हम बढ़िया हैं।
0: बढ़िया है ना?
1: अच्छे हैं।
0: ओके,
1: आप कैसे हैं?
0: अरे हम तो बहुत ही स्मार्ट हैं। बोलिए।
1: अच्छा
0: तो आज
1: हाँ,
0: आपको
1: हाँ, हमें पहले हमें कहने दीजिए। आज उसमें तो फीडबैक नहीं दे पाएंगे ना, पर आपने स्टार्टिंग में जो गाना सुनाया था ना, स्टार्टिंग का, हाँ वो दो लाइन तो जरूर सुनाएंगे, उसके बाद फिर आगे।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: ओके, बता दीजिए।
1: और कोई एक मिनट। हाँ।

0: ओके
1: अब बता दीजिए। हाँ गाना था, हाँ तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है, लाखों है मगर तुमसा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। हाँ ये
0: ओके एंजॉय कीजिए।

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। इस अंतरे में आए शब्दों से आप मुझे गाना लिखकर भेज सकते हैं सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पे, जो है 9135841232 91 35 84 12 32 पे।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बनाते हैं। मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा है मिसाल अंगद जी का। अच्छा, मिसाल अंगद जी के बाद है हमारे सुनील कुमार जी, सोनू गौतम जी, और ये क्या नाम है भाई, मिस्टर ये विश्वनाथ जी हैं। अच्छा, विश्वनाथ जी हैं, ओके। एम ताहिर जी हैं, दीपक जी हैं, अशोक कुमार जी हैं, राधा कृष्ण गोप जी हैं, सर्वजीत सेठी जी हैं, अनीतू जी हैं, सुनीता गोप जी हैं, प्रियंका जी हैं, रूपचंद गोयल जी हैं, बागेश्वर निषाद जी हैं, विशा क्या नाम है इनका, ये विष्णु चंद्र जी हैं, और दिनेश धनेश मिश्रा जी हैं, सर्वेश भागा जी हैं, निशांत रायबोले जी हैं, और शिल्पा बेन जी हैं, आरिफ सिंधी जी हैं। कॉल लगाते हैं सीधे मिसाल अंगद जी को।

0: बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भाईजान।
1: नमस्कार नमस्कार अमन सर जी।
0: नमस्कार।
1: बहुत अच्छा, बहुत दिनों के बाद फिर एक बार आपसे बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: ओके, और कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं अमन सर जी, हमारे इधर गणपति बप्पा की बहुत धूमधाम चल रही है।
0: अच्छा जी।
1: अभी आज हमें अभी आरआरसी को ही जाने वाले थे, आपका कार्यक्रम सुन रहे थे अभी, और अभी 5 मिनट के बाद भी हम आरती को जाने वाले थे। आरती को जाने के वाले के बाद फिर आपसे कार्यक्रम से जुड़ने वाले थे। बहुत अच्छा लगा कि इससे पहले आपसे बात हो रही है।
0: मुझे भी अच्छा लग रहा है आपसे बात हो रही है, तो
1: क्योंकि मुझे तो लगता है कि मुझे तो गणपति बप्पा ये मुझे प्रसन्न हो गया ऐसा लगता है, क्योंकि जाने से पहले आपसे बात हो रही है ना, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो मतलब अनंत चतुर्थी वो यानी कब है शायद, यानी कि
1: शुक्रवार को, अगले शुक्रवार को, जुम्मे के दिन
0: शुक्रवार को है ना।
1: जी, जी, हाँ, 25 तारीख को
0: है। जी बिल्कुल
1: 25 को हो। हाँ,
0: चलिए अच्छी बात है।
1: तो बहुत हाँ।
0: और बताइए।
1: और हमारे घर के और हमारे घर के सामने बहुत बड़ा मंदिर है, इनके मंदिर के सामने हमारे गणपति बहुत बड़े विराजमान कर दिए हमने, बहुत बड़ा पंडाल रखा है। हाँ
0: जी, और हमें ये भी मालूम है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा धूमधाम से वो गणेश चतुर्थी की पूजा की जाती है।
1: बहुत बहुत,
0: मतलब
1: 10 दिन
0: वो दस मनाया जाता है, बड़े बिल्कुल वो 10 दिन लगाए जाते हैं, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो 10 दिन 12 दिन हमारे पूरा एक त्योहार की तरह होता है।
0: हाँ हाँ, मुझे पता है पता है पता है। सबसे ज्यादा वही मनाया जाता है ना, जैसे कि दुर्गा पूजा हमारे यानी कोलकाता में सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे ही मतलब गणेश जी,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: वैसे ही गणेश जी की पूजा मतलब इन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा धूमधाम से की जाती है।
1: बिल्कुल एकदम सही कहा।
0: ओके, तो बताइए आज अंतर के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप?
1: गाना मैं अभी जो जो आमिर खान की और काजल की जो फिल्म है फना, इसी फिल्म का गाना है चांद सिफारिश करता हमारे।
0: ओके, सुना दीजिए।
1: ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।

सबसे पहले मैसेज मेरे पास पहुंचा हुआ है हमारे अशोक कुमार जी का, जो यानी पटना वाले हैं, और सोनू गौतम जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, और प्रियंका जी हैं, एम ताहिर जी हैं, दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं, राधा कृष्ण गोप जी हैं, दिलीप राम जी हैं, गणेश मिश्रा जी हैं, रूपचंद गोयल जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, निशांत रायबोले जी हैं, आरजे वंशिका जी हैं, और विष्णु चंद्र जी हैं, और शिल्पा बेन जी हैं, नीतू शरण जी हैं, हरीश सिंधे जी हैं, जितेंद्र जी हैं, और सुनीता गोप जी हैं। सीधे कॉल लगाते हैं हम अशोक कुमार जी का।

0: बहुत बहुत वेलकम है अशोक कुमार जी, मुझे लगा कि आपका कॉल लग नहीं पाएगा, लेकिन फाइनली लग गई कॉल आपकी। जी बिल्कुल
1: लग गई
0: जी जी। और कैसे हैं आप?
1: बढ़िया सर, ठीक है।
0: ओके, बहुत दिन बाद आप पार्टिसिपेट किए और आपसे बात करके मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है मैनेजर साहब।
1: अरे धन्यवाद सर, धन्यवाद।
0: और कैसे हैं और क्या कर रहे हैं आजकल?
1: बढ़िया है सर।
0: और मुझे पता है आप तो भाई यानी कि क्रिकेट के दीवाने हैं, दीवाने मतलब उनके और दीवाने हैं, और साथ ही साथ अमीन सैनी साहब के दीवाने हैं ही, वो तो मालूम है,
1: दोनों का दीवाने हैं।
0: जी जी बिल्कुल।
1: और अब आपके सर
0: और भाग्य हमारे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इस नाचीज को उस लायक समझने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे।
1: कहीं भी रहे रेडियो बजना चाहिए सर, गाना सुनते रहना।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। तो बताइए सर, आज अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुनकर
1: लाए? और वही दीवाना का सर, तेरी इसी अदा पे सनम
0: मुझको तो प्यारा है। सच में, अरे उनकी अदा ऐसी है दीवाना बना दे, क्या ही कहें।
1: सही बात
0: जी, धन्यवाद। और जो इसमें का ये जो ये म्यूजिक है ना, जो स्टार्टिंग में बजाता है, सच में बहुत कमाल का लगता है।

यहाँ पे आरजे यनवंशिका जी हैं, अरुण चंद गोयल जी हैं, और शिल्पा बेन जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, बाबूलाल अजाना जी हैं, और विष्णु चंद्र जी हैं, राधा कृष्ण गोप जी हैं, नीतू शरण जी हैं, एक साहब और भी हैं, नाम तो नहीं, अच्छा हाँ ये है शेर सिंह जी, मतलब शेर सिंह सहनी जी, ओके, और निशांत रे बोले जी हैं, मतलब और भी दोस्त हैं, तो फिलहाल कॉल लगाते हैं।

0: बहुत बहुत वेलकम है भाई सुनील कुमार जी, कैसे हैं
1: जी? नमस्कार सर।
0: नमस्कार, आपकी तबीयत कैसी है पहले ये मुझे बताइए।
1: जी अभी तो थोड़ी राहत है सर, और अभी आज सोचे थे गौतम सोनू गौतम से भी बात हुई थी दिन पे, तो बोले ठीक है आज जुड़िएगा, तो हम आज जुड़े हैं, थोड़ा उठ के बैठे हुए हैं।
0: अच्छा,
1: और पहले के मुकाबले, हाँ पहले के मुकाबले थोड़ा हाँ आज राहत मिली है मुझे।
0: तो इसी बात पर हम हाँ सोनू गौतम जी को भी लाइन पर लेते हैं।
1: जी जी
0: है ना,
1: जी जी
0: आपके साथ एक साथ बात करते हैं, है कि नहीं?
1: जी ले लीजिए।
0: हाँ हाँ मैं ले रहा हूँ, उनको भी लाइन पर ले रहा हूँ। और बताइए, तो सबसे पहले तो हम सबकी दुआएं आपके साथ है, क्योंकि आप बस अच्छे
1: जी
0: हो
1: जी
0: जाए,
1: जी
0: है ना, बस जल्द अच्छे हो जाए। और सोनू गौतम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं इनका भी। सोनू गौतम जी कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छे हैं सर, आप अपने बताएं कैसे हाल चाल?
0: अरे हम झकास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में चकचक हैं एकदम। और एक्चुअली इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ आपने इनको जोड़ा है और इनकी तबीयत अब अच्छी है, और सब सारा इन्फॉर्मेशन आपने ही दिया था, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।
2: हाँ सर, वो बात ये थी ना कि हमारी बात हुई थी दिन में, तो मैंने कहा मतलब सुनील भैया कि आप भी जुड़िए, वहाँ से हम लोगों को मजा नहीं आ रहा, आप नहीं है तो
0: हाँ।
2: तो बोल रहे थे हाँ चलो ठीक है मैं थोड़ा पार्टिसिपेट करूंगा, तो इस वजह से करने लगे वो।
0: ओके चलिए, अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भाई यानी सुनील कुमार जी बताइए, आप अपना कौन सा गाना वो अंतरा के शब्दों से निकाल कर लाए हैं?
1: जी आज वो उसका बलवा मूवी का है, ये मौसम भी गया।
0: ओके तो सुनाते हैं
1: यही सेट, और ये गाना सर पहले तो आपको डेडिकेट है, सोनू भैया आई हैं और हमारे एमडी ताहिर जी हैं, और तकरीबन जितने भी हमारे दोस्त हैं और सबने हमारे लिए, सब हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, तो सभी को ये मेरा गाना डेडिकेटेड रहेगा और सभी को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद है।
0: चलिए सुनवाते हैं, आपके पसंद का ये गाना, एंजॉय कीजिए सर। धन्यवाद
1: जी, धन्यवाद सर।

और यहाँ से शुरू होता है अंतर, तो इस अंतर में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेज सकते हैं 9135841232 पे, यानी 9135841232।

और इस बार मेरे पास फिर से मैसेज पहुंच चुका है एक बार फिर से आरजे आकांक्षा जी का और आरिफ सिंधी जी का और प्रियंका जी का, धनेश जी का, राधा कृष्ण गोप जी का, जितेंद्र जी का और रूपचंद गोयल जी का, नीतू शरण जी का, सर्वेश भागा जी का, बागेश्वर निषाद जी का, बाबूलाल अंजान जी का, विष्णु चंद्र जी का।

0: लगाते हैं सिरे। अब आ जाए कंसा जी, आप उससे अच्छा आपका नंबर ये बिजी जा रहा है, आप अब आपको नहीं कॉल किया जाएगा। अगला कॉल मैं लगाता हूँ आरिफ सिंधी जी को। आरिफ सिंधी जी बहुत बहुत आपको बधाई हो, और कैसे हैं आप?
1: शुक्रिया, खैरियत से हूँ, आप कैसे हो?
0: बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं।
1: अभी फिलहाल चेन्नई में हूँ।
0: अच्छा, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं?
1: वो काम के सिलसिले में आया था।
0: अच्छा, काम के सिलसिले में, तो कौन सा काम कर? अच्छा, कोई होगा अपना कोई पर्सनली काम है ना?
1: नहीं, मेरा तो साइकिल फिटिंग का ही काम है।
0: अच्छा, फिर
1: हाँ, तो यहाँ साइकिल के लिए आया था।
0: अच्छा, साइकिल के लिए आए हुए थे, ओके।
1: हाँ, साइकिल के काम के,
0: चलिए,
1: काम के सिलसिले में।
0: तो आपके घर से मतलब यानी कि चेन्नई की दूरी मतलब कितनी पड़ती है?
1: 1900 किलोमीटर।
0: 1900 किलोमीटर बहुत दूर है जी।
1: हाँ जी,
0: हाँ जी,
1: चार स्टेट पार करने पड़ते हैं।
0: चार स्टेट, ओह माय गॉड। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल बता दीजिए आज कौन सा गाना लेकर आए हैं अंतरा के आप सब दोस्त?
1: इन साजन झूला झूलू मैं वादा कैसे भूलूं।
0: ओके, सुनवाता हूँ, एंजॉय कीजिए, धन्यवाद,
1: शुक्रिया।

और मैसेज मेरे पास सबसे पहले पहुंचा है नीतू शरण जी का। ओके जी, और एक साहब और भी है, क्या नाम है इनका, नाम तो मुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन इनके बाद है हमारे सोनू गौतम जी हैं और प्रियंका जी हैं और दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं और राधा कृष्ण गोप जी हैं, सीता गोप जी हैं, सर्वजीत शेट्टी जी, अशोक कुमार जी हैं, रूपचंद जी हैं और विकास जी हैं और जितेंद्र जी हैं, अशिल्पा बेन जी हैं और धनेश मिश्रा जी हैं, सर्वेश बागा जी हैं, बागेश्वर निषाद जी हैं, आर जे यूनिवर्सिटी जी हैं और विष्णु जी हैं और आर्य सिंधे जी हैं।

0: बहुत बहुत वेलकम करते हैं। नीतू जी कैसी हैं आप?
1: हेलो
0: हेलो।
1: अच्छे हैं।
0: ओहो, बहुत देर के बाद आपका नंबर लगा है।
1: हाँ, देर हो जाता है वैसे भेजने में।
0: हाँ तो थोड़ा जल्दी भेजा कीजिए, इस बार जैसे जल्दी भेजा
1: तो।
0: हाँ इसी आ गया ना इस बार, है कि नहीं? ऐसे ही भेजा कीजिए कि एक नंबर में आ जाए, जैसे अभी भेजा है।
1: ठीक है।
0: हाँ और तो बताइए, आज अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाई हैं आप?
1: वादा रहा सनम होंगे वादा रहा सनम।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सुनवा दिए।
1: जुदा ना हम।
0: हाँ हाँ सही गाना है, बिल्कुल एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक। और मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा हुआ है किन का, हमारे गजन सुलकार जी का, और प्रियंका जी का, सुनू गौतम जी का, आरजे आकांक्षा जी का, सर्वजीत सेठ जी का, दीपक कुमार गायकवाड़ जी का, राधाकृष्ण गोप जी का, आरजे वंशिका जी का, सुनीता गोप जी का, अविकास वेदकारी जी का, बैगेश्वर शाह जी का, सुरेश भगत जी का, शिल्पा बेन जी का, अशोक कुमार जी का, मोहम्मद क्या नाम है इनका, मोहम्मद शाकिर जी। ओके।

0: बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका गजानन सलोकार जी, कैसे हैं?
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार
1: अभी और सुन रहा हूँ। नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार। तो अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना आप लेकर आए हैं?
1: उसने की वादियों में इश्क पलता रहेगा।
0: बिल्कुल पलता है। इंजॉय कीजिए।

और यहाँ शुरू हो रहा है अंतरा। इस अंतरा में शब्दों से अपने गाने लिख के भेजिए, क्योंकि उसके बाद स्टार्ट होगा सेकंड राउंड। तो इसलिए इस अंत मतलब इस यानी कि राउंड का ये आखिरी गाना होने वाला है, तो प्लीज अभी भेज दीजिए जल्दी से 9135841232 पे।

और मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे किनका, रूपचंद गोयल जी का। ओके, रूपचंद गोयल जी के बाद है हमारे यानी कि प्रियंका जी, आरजे आकांक्षा जी, दीपक जी, अशोक कुमार जी, राधा कृष्ण गोप जी और अजितेंद्र जी और सुनीता गोप जी और सर्वेश भागा जी, आरजे वंशिका जी, पिकू राय जी, बागेश्वर निषाद जी, बाबूलाल अंजाना जी, नीतू शरण जी, एम ताहिर जी और विष्णु चंद्र।

0: बहुत बहुत वेलकम है
1: हेलो सर जी,
0: रूपचंद गोयल जी, कैसे हैं?
1: थैंक यू सर जी, अच्छे है, आपसे बात हो रही है, दिल खुश हो गया
0: जी। बहुत दिन बाद आपसे बात हो रही है, बहुत दिन बाद आप यहाँ पार्टिसिपेट भी किए हैं।
1: जी।
0: तो बताइए, अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन कर लाए हैं आप?
1: वो मेरी पसंद का गीत है, मोहब्बत इनायत करम देखते हैं,
0: वो तो मेरी पसंद
1: कहां हम तुम्हारे सितम देखते हैं, नजरिए हमारी ना लग जाए तुमको, यही सोच कर तुमको कम देखते
0: हैं। कम देखिएगा
1: जी,
0: लेकिन हम ज्यादा देखेंगे
1: जी।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंतरा मस्ती। कल रविवार संडे स्पेशल में सुनिए स्टार मूवी चॉइस और कीजिए दिए गए फिल्मों से गाने की मैसेज फरमाइश सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप्स दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार और रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।
1: दोस्तों, अब तक आप अंतरे के शब्दों से गाने के बोल लिखकर भेज रहे थे, लेकिन अब आपको अंतरे के बोल से गाने की पहचान करनी है और उस गाने के सही बोल लिखकर भेजने हैं, और साथ ही साथ जो गाना सुनना चाहते हैं उसके बोल भी अपने जवाब के साथ ही लिखकर भेजें इस मैजिकल व्हाट्सएप नंबर पर जो है 9135 84 12 32।
2: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे दीवाना बना दे दीवाना बना दे। और सबसे पहले एक गाना था जिसको मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, मेरा वो दिमाग में था, यानी कि वो जहन में था, लेकिन यानी जुबान पे नहीं आ रहा था कौन सा गाना था। वो गाना मुझे अचानक से यूं ही मतलब आ गया याद, मैं उसी से फिर आगाज कर रहा हूँ और सुनवा रहा हूँ, और इसी से यहाँ पे सेकंड राउंड भी स्टार्ट होता है। तो लेट्स प्ले नाउ।

0: घर का मैगा और ये रहा आज का सबसे पहला सवाल सेकंड राउंड का।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: गोरे गोरे गाल पे तेरे ये जो काला तिल है, पिछले जन्म में तुझे दिया था वही तो मेरा दिल है। बुरी नजर से खुदा बचाए जानम तेरा मुखड़ा।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो।

वेलकम बैक। और मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा हुआ है किनका, यानी प्रियंका जी का पहुंचा हुआ है। ओके प्रियंका जी, और यहाँ पे अंचल कुमार जी भी हैं। ओके जी, और रवि महाड़े जी हैं, गणेश जी हैं, और यहाँ पे सर्वे सर्वजीत शेट्टी जी भी हैं। ओके, और मुझे कॉल ना करें प्लीज। और यहाँ पे ये हमारे मतलब कि एम ताहिर जी भी है। अरे भाई क्यों नहीं बात मान रहे।

0: फाइनली मैंने इनको ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि मैंने उनको मैसेज भी किया था कि नो कॉल, लेकिन वो नहीं मान रहे थे, तो मुझे मजबूरी में ब्लॉक करना पड़ा। ओके, और विष्णु जी हैं, आरजे आकांक्षा जी हैं, और राम कुमार ठाकुर जी हैं, रूपचंद गोयल जी हैं, बागेश्वर निषाद जी हैं। ओके, तो फिलहाल मैं कॉल लगाता हूँ इन प्रियंका जी को। हेलो, आपका बहुत बहुत वेलकम है सेकंड राउंड में। कैसी है प्रियंका जी?
1: हम तो एकदम बढ़िया है, मस्त।
0: ओके, तो बताइए पहले इसका जवाब।
1: मैंने देखी लाखों मुखड़ी, ना देखा तेरे जैसा मुखड़ा,
0: देखिएगा
1: लगे।

0: पता कैसे नहीं होगा, वो श्री देवी का सॉन्ग जो है।
1: अच्छा जी बताइए, और ये गाना कौन सा सुनना चाहती हैं आप?
0: श्रीदेवी का सॉन्ग है तो हमें तो यही वाला सॉन्ग सुनना है।
1: अच्छा, चांद
0: कि मैंने देखे लाखों मुखड़े, क्योंकि उसका जैसा मुखड़ा था आज तक मैंने भी नहीं देखा।
1: अच्छा जी,
0: इसलिए आप प्लीज यही वाला सॉन्ग सुना दीजिए।
1: ओके, चांद का टुकड़ा सुनाता हूँ आपको, तू लगे चांद का टुकड़ा।
0: और आप भी थोड़ा सा इसको गुनगुनाना, आप गुनगुनाते हो तो लगता है कि प्रोग्राम चल रहा है, वरना ऐसा लगता है कि बस चुपचाप सब सुन रहे हैं बैठ के भाषण।
1: ओके, तो सुनवाते हैं, एंजॉय कीजिए।

0: लाइन आएगा नो बहुत कमाल का है बिल्कुल। और ये सॉरी ये अगला सवाल,
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, तेरी मेहंदी लगी हाथों में जब चूड़ी खनकती है, तो इस गोरी कलाई में ये दिल बन के धड़कती है, ये चूड़ी आशिकों को प्यार की नगमे सुनाती है।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

0: मैं बता दूं, मेरे पास सबसे पहला जो मैसेज पहुंचा हुआ है वो हमारे सोनू गौतम जी का है, बिल्कुल, और अंचल कुमार जी हैं, एम इन ताहिर जी भी हैं, और मिशाल अंगद जी हैं, और रवि महर जी हैं, आर जे आकांक्षा जी हैं, और बागेश्वर निषाद जी हैं, और मनीषा शर्मा जी हैं, और ओके तो सीधे कॉल लगाते हैं सोनू गौतम जी को। गौतम जी नमस्कार, मुझे पता था कि आपका सेकंड राउंड में जरूर नंबर आ जाएगा, अब पहले ही आ गया है कि नहीं?
1: जी जी बिल्कुल,
0: क्योंकि आप यानी कि अंतरा पहचान जाते हैं बहुत जल्दी, मुझे पता है।
1: हाँ जी,
0: भले उसमें आप लिखने में भेज में वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, लेकिन इसमें तो आप बाजी मारते हैं बहुत ज्यादा, मुझे पता है। जी बताइए, तो जब आप बताइए कौन सा गाना है?
1: समझकर चांद जिसको आसमान ने दिल में रखा है।
0: बिल्कुल सही जवाब है आपका। गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: गाना सर देखो, ये हमारे अहम ताहिर भाई जी का भी पसंद है और आपकी भी पसंद है, तो यही सुना दो।
0: तो मतलब वो कौन सा गाना?
1: यही समझकर चांद जिसको आसमान ने दिल में रखा है।
0: समझकर सुना है, समझ
1: जी। ओके। जी आपकी भी पसंद है ना, और अहम ताहिर भाई की भी पसंद है हमारे।
0: तो सुनाते हैं, एंजॉय कीजिए।
1: थैंक यू सर।

0: और ये रहा अगला सवाल,
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: मेरी हसरतों पे बेखुदी सी छा गई, तुमको देख कर निगाह लड़खड़ा गई। मेरी हसरतों पे बेखुदी सी छा गई, हो रहा हूँ मैं नशे में चूर क्यों, झूमती हुई फिजा से पूछ लो।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे। अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं, सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

0: और जो गाना सुनना है वो भी तो लिख के भेजा करें आप लोग प्लीज।
1: बड़ी अनमोल है गोरी।
0: लेकिन इस बार फिर से एक बार बाजी मार चुके हैं हमारे सोनू गौतम जी ही, नो प्रॉब्लम। और अंचल कुमार जी हैं, दीपक जी हैं, और पूजा भास्कर जी हैं, आरिफ सिंधी जी हैं, और राहुल पासी जी हैं, आरजे आकांक्षा जी हैं। तो सीधे कॉल लगाते हैं सोनू गौतम जी को एक बार फिर से। भाई बहुत बहुत बधाई हो एक बार लगातार, ये दूसरा नंबर है, क्या बात है
2: जी।
0: तो जवाब बता दीजिए।
2: बादलों में छुप रहा है चांद क्यों।
0: बिल्कुल सही जवाब है। और क्या सुनना पसंद करेंगे?
2: सड़क मूवी का सुनवा दो।
0: ओके,
2: हम तेरे बिन कहीं रहने का
0: सुनवा दिए।

0: और ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, तेरी अदा भी है झोंके वाली, छू के गुजर जाने दे, तेरी लचक है कि जैसी डाली, दिल में उतर जाने दे, आजा बाहों में करके बहाना, होना है तुझ में फना।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

मेरे पास बहुत सारे मैसेज पहुंच चुके हैं। सबसे पहले रवि मोहाड़े जी, ओके जी, और अंचल कुमार जी, सोनू गौतम जी, रूपचंद गोयल जी, दीपक कुमार जी, और प्रियंका जी, आरजे कांछा जी, एम ताहिर जी, और क्या नाम है इनका, यानी इनके शायद नाम लिख रहा है प्रोफाइल में, पुनीत सोलंकी जी। अच्छा, ओके, पुनीत सोलंकी जी, और सुनील कुमार जी हैं, राहुल शुभ जी हैं, राधा कृष्ण गोप जी हैं, और ये राम कुमार ठाकुर जी हैं, और सुनीता गोप जी हैं। सभी का वेलकम करते हुए सीधे कॉल लगाते हैं हम इनको।

0: बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी, रवि मोहड़े जी, कैसे हैं?
1: और कैसे हो सर जी, आप सुनाइए।
0: अरे हम तो बहुत ही झकास बिलास फर्स्ट क्लास मजे में चकाचक एकदम है।
1: चलिए ईश्वर ऐसे ही रखे आपको हमेशा। चलिए ऐसे ही रहिए आप।
0: धन्यवाद।
1: तो चलो लगी गए आखिर मेरा नंबर तो बता दीजिए, गाना बता दूं सर कौन सा है?
0: हाँ हाँ बता दीजिए बिल्कुल।
1: चांद सिफारिश जो करता तुम्हारी,
0: बिल्कुल सही जवाब
1: है। वाला गाना।
0: और गाना कौन सा सुनना पसंद करेंगे
1: सर? आप ही की पसंद से सुनवा दीजिए आज तो।
0: तो आज मैं, आज जो मैं थीम लेके आया हूँ वो है यानी कि चांद, ठीक है? तो इसी पर सभी गाने का मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तो एक यही गाना सुनिए, एंजॉय कीजिए, है ना?
1: जी जी ओके।

0: तो फिलहाल ये सवाल,
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: एक दूजे के दिल में अपना घर बनाना है, तेरी खातिर सभी हदों से गुजर जाना है। तुझसे लिपटा रहूंगा बनकर कंगना तेरा।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने की बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना। बजाते रहो दिल से।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा अंचल कुमार जी का, सोनू गौतम जी का, अर्जय कांसा जी का, दीपक कुमार गायकवाड जी का, और सुनील कुमार जी का, आरिफ सिंधे जी का, विजय राज जी का, रूपचंद गोयल जी का, राधा कृष्ण गोप जी का, अजय खोज जी का, राहुल सुख जी का, और कोई नाम है इनका, क्या नाम है, एस के जी, और हमारे गजानंद जी हैं, और सुनीता गोप जी हैं, और यानी पुनीत सोलंकी जी हैं। इन सभी का जवाब सही है, लेकिन कॉल लगाते हैं अंचल जी को। बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका अंचल कुमार जी, कैसे हैं?
1: गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग
1: सर जी, आपकी तो बहुत है
0: जी।
1: हम तो अच्छे हैं सर, आप भी सर?
0: अरे हम तो अच्छे सर, हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ओके तो बताइए जवाब।
1: चांद तारों में नजर आए तेरा तेरा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: गाना सुना दीजिए, तेरा मिलना जुलना जो हुआ है।

0: फिलहाल ये सवाल है,
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। पक्के पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पाकी का कपड़ा कपड़ा। पक्के पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ या पका पपीता। पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। कितना मुश्किल ये गाना, जरा गा के दिखाना।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजा

वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं। इस बार सबसे पहले मैसेज मेरे पास पहुंचा हुआ है, नाम है ये पुनीत सोलंकी जी। ओके, पुनीत सोलंकी जी के साथ अंचल कुमार जी हैं, रूपचंद गोयल जी हैं, प्रियंका जी हैं, दीपक जी हैं, निशांत राय बोले जी हैं, गजानन सुरकार जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, और एक क्या नाम है भाई इनका, नाम तो मुझे लिख नहीं रहा है कहीं, 09570 नंबर है इनका। और राम कुमार ठाकुर जी हैं, आरिफ सिंधी जी हैं, और आरजे आकांक्षा जी हैं, और हमारे आराध्या जी हैं, और ओके तो सीधे कॉल लगाते हैं इनको।

0: जी आपका शुभ नाम?
1: हेलो
0: जी हेलो,
1: हाँ जी बोलिए
0: जी सर जी आपका शुभ
1: हाँ,
0: नाम?
1: बोलिए बोलिए
0: आपका नाम?
1: मेरा नाम पुनीत सोलंकी।
0: जी जी बहुत बहुत आपका मैं वेलकम करता हूँ। और कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया सर।
0: ओके, तो जवाब बता दीजिए गाने का।
1: चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना।
0: और गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: गाना सुना दीजिए मुझे, हजार खाब।
0: ये कौन सा गाना है, हजार खाब?
1: ये है इंसाफ का तराजू का है शायद, महेंद्र कपूर की आवाज में।
0: देखता हूँ मैं।
1: हजार खाब हकीकत का रूप ले लेंगे।
0: ओके, मैंने सुना दिया, एंजॉय कीजिए।
1: हाँ जी, थैंक यू सर।

0: ओके, और ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की, तुम वो शराब हो।
3: दोस्तों, आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना।

नाम ही इनका मतलब यानी कि विजय राज शायद यही है इनका जवाब। उनसे मैं बातें मैं मतलब मैं करूंगा तो समझ में आएगा। उसके बाद इन सोनू गौतम जी हैं और गजानन सुलकार जी हैं और रूपचंद गोयल जी हैं और सुनील कुमार जी हैं और हमारे ओके फिलहाल इनको

0: जी भाई, आपका शुभ नाम?
1: विजय राज।
0: विजय राज जी, और जवाब बता दीजिए।
1: ये तेरी आंखें झुकी झुकी हैं।
0: अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं, ये गाना नहीं, जो जो आपने वो जवाब भी नहीं भेजा वो मुझे बताइए, क्योंकि आपने हेलो
1: जवाब, हेलो
0: जी, ये जो जवाब है वो मुझे बताइए। शायद नो प्रॉब्लम, इनका फोन कट गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इनका गाना हमारे पास आ चुका है, मैं उनको मैं प्ले कराता हूँ। ओके, एंजॉय कीजिए।

0: मैं सवाल करना भूल गया था, मैं सवाल कर लेता हूँ यहाँ पे।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

वेलकम है। मेरे पास सबसे पहले मैसेज किन का पहुंचा हुआ है, यहाँ पे अंचल कुमार जी का है, अंचल कुमार जी के बाद हमारे गजन सुरकार जी का है, रवि भाड़ जी, रूपचंद जी है, और एक साहब और भी जुड़ चुके हैं, क्या नाम है, सचिन देव कुमार जी, बहुत बहुत वेलकम।

0: एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है आपका अंचल कुमार जी।
1: जी सर,
0: तो जवाब बताइए
1: सर। चांद सी महबूबा हो मेरी,
0: बिल्कुल सही जवाब है। और क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: गाना सुना दीजिए सर, भोजपुरी सर। जान लेबू का हंस के गोरी, उदित नारायण का।
0: अच्छा जी, जान लेबू का हंस के गोरी। ओके, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

0: और ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, दूर से ही तुम जी भर के देखो, तुम ही कहो कैसे दूर से देखो, चांद को जैसे देखता चकोर है, कुमसुम सा है, गुपचुप सा है, मदहोश है।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दी दीवाना, बजाते रहो

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंतरा मस्ती। कल रविवार संडे स्पेशल में सुनिए स्टार मूवी चॉइस और कीजिए दिए गए फिल्मों से गाने की मैसेज फरमाइश सिर्फ रेडियो हॉट स्टार के एप्स दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार और रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और यहाँ पे सबसे पहला मैसेज इनका पहुंचा भाई, क्या नाम है इनका? नाम है इनका आराध्या जी। ओके आराध्या जी, मैं आपको कॉल लगाऊंगा। उनके बाद हम सोनू गौतम जी हैं और अंचल कुमार जी हैं, दीपक जी हैं, मनीषा शर्मा जी हैं और एक साहब और है, क्या नाम है इनका? मुझे नाम ही नहीं पता चल रहा है इनका। अंत में नंबर है 09570 और रूपचंद गोयल जी हैं, एक साहब और भी हैं, सचिन देव कुमार जी। ओके और सर्वेश भगत जी भी हैं और राधा कृष्ण गोप जी हैं। ओके तो सीधे कॉल लगाते हैं इनको, आराध्या जी को।

0: जी हेलो जी हेलो हेलो
1: हाँ बोलिए कृष्णा।
0: हाँ जी, आपका शुभ नाम। अच्छा कृष्णा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: प्रयागराज
0: अच्छा प्रयागराज से। ओके, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। तो इसका क्या जवाब था बता दीजिए।
1: चांद छुपा बादल में,
0: ओके, और आप इनके कौन सा गाना सुनना चाहेंगे
1: एनी वे कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए, मैं
0: आप बता दीजिए
1: से
0: प्लीज।
1: और सुनूंगा। हम क्या बताएं, वो
0: जी
1: सुनाइए, नदिया के पार का सॉन्ग, नदिया के पार का सॉन्ग सुना
0: अच्छा,
1: दीजिए।
0: ओके ओके, ठीक है ठीक है, मैं आपको सुना रहा
1: ओके
0: हूँ,
1: थैंक
0: एंजॉय कीजिए। ओके।
1: यू। ओके।

0: फिलहाल अगला सवाल मैं कर लेता हूँ। और
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, लगती हो किसी शायर का ख्याल, ऐसी सादगी तो है खुद में बेमिसाल। खुद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर, ये मेरे हमनवा, ये मेरे हुजूर।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

0: और इस पर सबसे पहले मेरे पास मैसेज पहुंचा है एम ताहिर जी का, सोनू गौतम जी का, और भाई इनका तो नाम मुझे नहीं पता है ना ही क्या है, मैं इनसे बार बार करूँ कि भाई अपना नाम बता दीजिए, नाम भाई बता दीजिए, नंबर है 09570 अंत में नंबर है इनका प्लीज़। दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं, रूपचंद गोयल जी हैं, गजानन सुलकार जी हैं, रवि मोहर जी हैं, राहुल पासी जी हैं, आरिफ सिंधी जी हैं, और विकास विकास गदकारी जी हैं, और इन विष्णु चंद्र जी हैं, और इन विजय राज जी हैं, और यानी कि यहाँ पे कृष्णा जी हैं और राधा कृष्ण गोप जी हैं। ओके, तो सीधे कॉल लगाते हैं हम एम ताहिर जी को। बहुत बहुत आपका वेलकम करते हैं।
1: लाल सर शुक्रिया।
0: और कैसे हैं एम ताहिर साहब?
1: बस सुनाइए, आप कैसे हो?
0: जी हम तो बहुत ही अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं, और बहुत देर से आपका नंबर लगा। माय गॉड, मुझे लगा कि नंबर नहीं लगेगा, स्पेशल कॉल में आपको कॉल किया जाएगा।
1: अरे सर शुक्रिया उस सोच के लिए, लेकिन सर मेहनत पर सफल हुई और आपका प्यार मिला इससे, और आपसे बात हुई, इससे बेहतर क्या बात होगी?
0: नहीं तो ऐसे भी होती बात है, स्पेशल कॉल जिंदाबाद।
1: वो तो सर आपकी मोहब्बत की नजर थी और मिलती वो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो बताइए सबसे पहले जवाब बता दीजिए आप।
1: हाँ सर चांद से पर्दा गिर गया।
0: हाँ, और आपको यानी क्या सुनना है वो भी बता दीजिए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: बस सर यही गाना सुना दीजिए, अच्छा गाना है।
0: चांद से पर्दा कीजिए, ओके जी। गाना तो सच में ये अच्छा गाना है, चांद से पर्दा कीजिए, है कि नहीं?
1: इसमें कोई दोराय नहीं, और आप प्ले करोगे तो इस गाने का साथ मिल जाएगा आपकी आवाज।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैंने प्ले कर दिया।

0: आखिरी सवाल, उसके बाद स्पेशल कॉल करने वाला हूँ मैं।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: जो खुले जुल्फें तुम्हारी, दिल में काली रात हो, तुम जरा आंचल उड़ा दो, धूप में बरसात हो, सागर की प्यासी लहर हो झूमे तुम्हें देखकर।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दी दीवाना। बजाते रहो दिल से।

0: जी बहुत बहुत आपका वेलकम करते हैं आरजे आकांक्षा जी।
1: हाँ जी।
0: और बोलिए कैसी हैं?
1: बस ठीक ठाक।
0: मुझे तो लग नहीं रहा कि आप ठीक ठाक हैं।
1: इसीलिए तो बोला ठीक ठाक है। आप क्या चाहते हैं, बोले ठोक ठाक है?
0: नहीं, क्योंकि मुझे वो हाँ। आपके वो चेहरे की हंसी नहीं दिख रही है ना, इसीलिए कह रहा हूँ।
1: आज थोड़ा सा हंस भी है बस, इसलिए।
0: ओहो, ये तो होते रहता है कि नहीं?
1: हाँ, नहीं होता नहीं रहता है, बस वही हर्ट कर सकता है जिसको इतना मतलब दिया जाता है।
0: अच्छा।
1: कद्र किसी की ज्यादा होती है ना, तो वही उतना फिर आपको दुखी भी कर पाता है।
0: होता है,
1: दुनिया का दस्तूर है।
0: देखिए, कहने का मतलब ना कि अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं, मिस्टेक हो जाती हैं, है कि नहीं?
1: नहीं, अनजाने में हर बार कैसे होती है, ये नहीं समझ आता मुझे।
0: अब मुझे नहीं पता है, फिलहाल होती है, मिस्टेक हो जाती है, चाहे वो गलती से ही मिस्टेक। अच्छा। क्यों नहीं हो जाती है?
1: क्या ही बोले इस पे?
0: तो पहले मुझे बताइए,
1: किसी का बचपना समझ के बस माफ कर दे रहे हैं?
0: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो आपका बड़प्पन है। हाँ। तो बताइए, सबसे पहले इसका जवाब बता दीजिए मुझे।
1: मैं भूल गई। तुमसे अच्छा कौन है?
0: अच्छा, हमसे
1: चांद तारे फूल सब में।
0: हाँ बिल्कुल, हमसे अच्छा कोई नहीं है।
1: नहीं, अब क्या ही बोले हम।
0: जी बिल्कुल। आप और कौन सा गाना सुनना चाहते हो, वो भी बता दीजिए।
1: नहीं, उससे पहले ये बताना चाहेंगे कि दो बार हमने इसलिए कॉल नहीं रिसीव की थी। पहली बार में किसी का पैसा बकाया था।
0: अच्छा।
1: तो उस टाइम पे तो भाई कोई अगर फोन मिस किया तो पैसा गया।
0: अच्छा।
1: तो हम कतई नहीं मिस कर सकते थे। दूसरी कॉल थी घर वालों की। घर वाले इस वक्त घर पे है नहीं, आज राधा अष्टमी है।
0: अच्छा।
1: सब गए हैं दर्शन को।
0: अच्छा।
1: बनारस। तो भाई दो दिन से गायब है घर वाले और एक कॉल आ रही है, तो मतलब मैं क्या करूं, मैं अभी खुद भी परेशान हूँ।
0: वही तो मैं कहूं,
1: उसी टाइम पे एन वक्त पे
0: जब भी मैंने कॉल लगाया आपका नंबर बिजी।
1: हाँ, तो दो घंटे से मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ, शो में बनी हुई हूँ। इसका मतलब मैं भी तो वेट कर रही हूँ मेरी साइड से कि मेरा भी नंबर आए।
0: हाँ, तो नंबर आया तो आपको कॉल किया गया ना। बिल्कुल,
1: पर सामने वाला बचकानी हरकत करेगा तो उस पर अच्छा लगता है, सूट करता है, आप बताइए।
0: हाँ, वो क्या कहें अभी, वो यानी कि
1: बस यही कह सकते हैं कि हाँ, बस एक माँ की जैसा कोई समझ रहा है तो फिर वो जिद कर रहा है कि भाई क्यों गायब, ये मान सकते हैं। चलिए,
0: हाँ तो मतलब बचपना मतलब गायब नहीं हुआ है ना, इसलिए
1: वो जाएगा भी नहीं। हाँ। नहीं जाएगा वो, उसका तो जा ही नहीं सकता। अच्छा। मुझे नहीं लग रहा है इस जन्म जाने वाला है। अब वही है ना, ठीक ठाक नहीं ठोक ठाक करेंगे तो चाहे सही हो जाए।
0: बिल्कुल, फिलहाल बताइए अब। सॉरी, मुझे खांसी आ रही है, माय गॉड।
1: ये मौसम ही चल रहा है, आप ही का नहीं है। उसके अलावा मतलब ये नहीं, आप समझ रहे हैं, मतलब कॉल्स पे कॉल्स, स्कूल वाले प्रोजेक्ट थमा दी, अलग ही है रोना। फिर उसके बाद में जो जिन जिन की बीमारी है भाई, स्पेशल वाला अपना काढ़ा बता दो, इतने दिन से झेल रहे हैं। तो आप नहीं समझते, हम एक जगह नहीं फंसे होते हैं, हजारों जगह फंसे होते हैं। हमारे लाइफ में हमारा खुद का वक्त है ही नहीं हमारे लिए।
0: अब कहने का मतलब कि आप अब पूरे जमाने का ठेका ली हुई है ना, इसीलिए।
1: वाह, क्या बात है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, आपने सचुआ दिया, उसके लिए शुक्रिया आपको।
0: बिल्कुल। तो
1: चलिए, अब एक एक एक लोग का और ठेका लिए है, तो वो ठेका आपको बता देते हैं। चैट बॉक्स में एक मैसेज आया हुआ है, एक मोहतरमा जिनका नाम है कायना, ठीक है।
0: अच्छा।
1: उन्होंने एम ताहिर जी के लिए रिक्वेस्ट किया है कि कोई मुझे गाना सुनवा दे। गाने के बोल है, मुझे अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया
0: है, क्या
1: और
0: है?
1: फिर लिखती है, मेरा तहरी, मेरा खिचड़ी, मेरा पुलाव और मेरा वेज बिरयानी सब तुम्हारे इंतजार में बेकार हो गया।
0: अरे बाप रे। हाँ, तो गाना कौन सा?
1: तो ये गाना भाई सुना ही दीजिए, यही वाला, और
0: मुझे अल्लाह की कसम। ओके,
1: हाँ हाँ,
0: थैंक यू
1: सो मच,
0: एंजॉय कीजिए
1: जी, शुक्रिया।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंतरा मस्ती। कल रविवार संडे स्पेशल में सुनिए स्टार मूवी चॉइस और कीजिए दिए गए फिल्मों से गाने की मैसेज फरमाइश सिर्फ रेडियो हॉट स्टार के एप्स दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार और रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: वेलकम बैक। और सबसे पहले अब मैं स्पेशल कॉल करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं कॉल लगा रहा हूँ राधा कृष्ण गोप जी को।

0: हेलो
1: जी राधा कृष्ण गोप जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है स्पेशल कॉल में। कैसे हैं आप?
0: हेलो
1: जी, हेलो
0: सर।
1: हेलो
0: हेलो।
1: हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है मेरी?
0: आवाज नहीं आ रही सर।
1: अच्छा, दोबारा कॉल करूं?
0: हेलो,
1: चलिए दोबारा कॉल लगाता हूँ इनको, राधा कृष्ण गोप जी को एक बार फिर से, चूंकि इनको इनको मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। राधा कृष्ण जी,

0: हेलो।
1: जी, अब आवाज आ रही है मेरी?
0: हाँ सर, आवाज आ रही। आ रही सर, प्रणाम
1: ओ
0: सर।
1: क्या जी, प्रणाम प्रणाम। और कैसे हैं आप भाई?
0: ठीक
1: आपका हेलो ट्यून बहुत बढ़िया है।
0: है सर।
1: और बताइए आप कैसे हैं और क्या कर रहे हैं
0: अरे सर, अब वही वही सर, प्रोग्राम सुन रहे सर। सर
1: जी? आपका स्पेशल कॉल में बहुत स्वागत है। तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे, कौन सा गाना? हेलो,
0: तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम।
1: हम तुम्हारे हैं सनम। ओ हो,
0: हाँ सर।
1: ओके, हम तुम्हारे हैं सनम। तो सुनवा रहा हूँ ये गाना, एंजॉय कीजिए। और ये हमेशा
0: जी
1: आपको ये सुनते हैं, हम तुम्हारे हैं सनम। क्या बात है,
0: जी सर, हमको तो गाना अच्छा लगता है सर।
1: अच्छा लगता है। ओके, सुनवा दीजिए।

0: जी बहुत बहुत आपका वेलकम है। विष्णु चंद्र जी कैसे हैं?
1: ठीक है जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, राधे राधे। और तो आज आप क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: गाना एक है, पहले तो मैंने कृष्ण जी का ही भेजा था, राधा अष्टमी थी, नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, ये वाला भेजा था।
0: नहीं फिलहाल आप यानी कि अभी कोई फिल्मी गाना भेजिए, क्योंकि वो मुझे मिलेगा नहीं।
1: कोई नहीं, मैं भेज देता हूँ, ये वाला बताता हूँ आपको।
0: हाँ,
1: आग चाहत की लग जाएगी।
0: आग चाहत की लग जाएगी, आग चाहत की लग जाएगी। ओके चलिए, मैंने सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम एक और अगला कॉल लगाते हैं दीपक कुमार गायकवाड़ जी को। बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीपक कुमार गायकवाड़ जी, कैसे हैं आप?
1: हमारे स्टार आरजे अमन जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, बिल्कुल स्मार्ट हूँ।
0: हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, होना भी चाहिए।
1: आज नहीं हूँ, आज लगा नहीं मेरा, इसलिए नहीं हूँ।

0: ओके फिलहाल बताइए
1: सर, एक छोटी सी सलाह दे दूं क्या? और
0: जी जी जी बोलिए बोलिए।
1: व्हाट्सएप पे जो प्रोग्राम आपका, जैसे हम आंसर देते हैं, तो जैसे ही जिसका आंसर सबसे पहले आपके पास उसका आया जवाब, आप उसको रिप्लाई में कुछ थंप वगैरह भेज सकते हो, ताकि उसको पता रहे कि हाँ भैया मेरा फर्स्ट नंबर आ गया, मुझे अमन जी का कॉल आने वाला, तो वो तैयार रहे।
0: अरे बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि जब मैं ऑन एयर बातें कर रहा हूँ तो वो तो इन्हें सुन रहे हैं ना कि हाँ उनका नंबर आने वाला है।
1: हाँ हाँ, बाकी वो ध्यान व्हाट्सएप पे रहता है ना कि हाँ व्हाट्सएप पे हाँ मेरा हो गया, देख लिया कि नहीं देख लिया है, और मैं थंब आ गया तो मतलब वो समझ जाएगा कि हाँ मुझे फोन आने वाला है, मैं विनर हूँ इसका। और उसके बाद फिर आप कॉल करते ही हो।
0: हाँ,
1: तो वही मैं सोच रहा था कि वो रिप्लाई में अगर आप जैसे भेज दें जिसका फर्स्ट आ गया, वो हमको तो पता नहीं कि फर्स्ट हूँ कि नहीं हूँ, अगर रिप्लाई आया तो हमको पता रहेगा कि हाँ फर्स्ट आ गए, अब हमारे पास कॉल आने वाला, तो हम जरा नेटवर्क में आ जाए जरा, जिसके कई बार होता ना वो नेटवर्क प्रॉब्लम कारण फोन कट जाता, फिर वही समय डबल लग जाता है।
0: जी जी जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। ओके ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, मतलब अगली बार से यानी कि कुछ उनके लिए।
1: चलो, अब ज़्यादा समय लेता नहीं हूँ मैं, और क्योंकि समय बहुत कम बचा है, और गाने के मेरे बोल हैं, तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे, सुना दीजिए।
0: ओके जी, तू जब जब मुझको पुकारे।
1: इसमें भी कुछ चांद का बोला है उसने शुरू शुरू में।
0: हाँ,
1: ये धरती चांद सितारे। धन्यवाद, शुक्रिया सर, गुड नाइट।

0: जी सर्वेश भगत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पेशल कॉल में, और कैसे हैं आप?
1: ठीक है सर।
0: ओके, तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे? हेलो सर्वेश भगत जी, आवाज आ रही है मेरी?
1: गंगा जमुना का गाना है जी।
0: जी
1: गंगा जमुना फिल्म का गाना है।
0: ओके, और मतलब
1: लड़ जाएगी तो?
0: अच्छा, नैन लड़ जाएंगे।
1: हाँ
0: ओके जी, तो मैं आपको सुनवाता हूँ इस गाने को, है ना
1: जी? थैंक यू सर, धन्यवाद।
0: ओके ओके ओके, ठीक है।

0: और इनके बाद एक मैं आखिरी कॉल लगाऊंगा यानी कृष्णपा बेन जी को। फिलहाल ये कॉल।
1: आँख मिल जाई है सजनिया से तो
2: कहाँ गई निंदिया चुरा।
0: जी सर्वजीत सेठी जी आपका बहुत बहुत वेलकम है स्पेशल कॉल में, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया हूँ मैं सर जी, आप सुनिए आप कैसे हैं?
0: अरे हम तो झकास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में चकाचक एकदम स्मार्ट हैं।
3: जी सर,
0: तो बताइए आज क्या सुनना पसंद करेंगे स्पेशल कॉल में?
3: सर आज मुझे विवाह मूवी का गीत सुनना है, मुझे हक है।
0: मुझे हक है, बिल्कुल मुझे हक है और आपको भी हक है सुनने का।
3: जी जी जी
0: सुनवा दिए, एंजॉय कीजिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: तू आ आ
1: जा जा घर तू जा जा
0: अरे आ आ इधर तू आ आ
1: जा जा घर

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: ना,
0: सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: नजर।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।